0: RNZ.
1: Even if she just wants to sit there and paint her nails, and she's made the choice not to have children, she's allowed to do that.
2: Thank you. That is absolutely true.
3: Two women from different parts of the world.
4: In South Africa.
1: From Japan.
2: In the Ivory Coast.
5: I'm Indigenous myself.
3: Come together to share their stories.
6: Your narrative and your bravery, I really honour you and the work that you're doing.
7: Oh, thank you so much.
3: The Conversation from the BBC.
0: The BBC World Service. Midnight till 8 a.m. every day on NPR.
8: Namaste, Manoj. I'm Manoj.
9: And I'm Shilpi.
8: And this is not a show.
9: This is not a show.
8: Patjhad hai.
9: Patjhad.
8: Patjhad hai.
9: Par kitna sundar hai.
8: Aha.
9: Matlab jo colors ho rahe hai na.
8: Hmm.
9: Kya mast colors ho rahe hai.
8: इतने कलर मैंने पेड़ पौधों पे मैं देखूंगा ये मैंने कभी सोचा नहीं था.
9: एक्चुअली व्हेन यू गो टू दैट विंडमिल फार्म ऊपर तो वहां से देखो कितने प्यारे रंग दिखते हैं. वैसे भी मतलब यू नो यू गो टू समर हिल उस तरफ दिखते हैं. यू गो टू मेसी यूनिवर्सिटी उस तरफ बहुत दिखते हैं. ब्रिज की तरफ जाओ वहां बहुत दिखते हैं. न्यू ब्रिज की तरफ सो इतने ब्यूटीफुल कलर्स. यू राइट मैंने कभी नहीं सोचा था कि पेड़ लाल हो सकते.
8: हाँ वही मैं कह रहा हूँ कि मैंने इसे कभी सोचा नहीं था कि मेरे को पेड़ पे पीच कलर दिखेगा
9: बिना फूल के. मतलब पेड़ पे कलर इज लाइक फॉर अस इट्स लाइक ग्रीन ब्राउन एंड कलर ऑफ द फ्लावर.
8: पत्तों की बात कर रहा हूँ.
9: हाँ
8: मैंने इसे कभी सोचा नहीं था. एंड there is this वो चेरी ब्लॉसम का पेड़.
9: हाँ हाँ पिंक.
8: हाँ तो नॉट ओनली चेरी ब्लॉसम का कलर अलग है ठीक है मतलब बहुत अलग है बट उसके पत्तों का भी कलर अलग है.
9: या that's true.
8: मतलब उसके पत्तों पे भी कलर है बहुत सारे.
9: पत्तों पे ग्रीन कलर है but that's a very different kind of tree.
8: हाँ और अभी बिकॉज वो भी झड़ रहे हैं उनका भी कलर येलो मरून ऐसे हुआ जा रहा
9: है. नहीं वो तो है बहुत ब्यूटीफुल है. साउथ आइलैंड में ना एक जगह है.
8: साउथ आइलैंड में बहुत जगह है.
9: मतलब एक जगह है जहाँ पे इतने ब्यूटीफुल कलर्स आते हैं. आई वॉज देयर लाइक फ्यू ईयर्स अगो. आई वॉज देयर ड्यूरिंग दिस टाइम अप्रैल मई में मैं वहाँ पे थी और मुझे मतलब आई टुक सम फोटोज एंड आई फेल इन लव विद दोज फोटोज बिकॉज ऑफ द कलर्स. सो इफ समबडी आस्क्ड मी व्हाट इज योर फेवरेट सीजन इन न्यूजीलैंड आई ऑलवेज से ऑटम. आई नो मतलब समर भी है बट ऑटम इज लाइक बिकॉज ऑफ द कलर्स आई जस्ट लव ऑटम.
8: फॉर मी ऑटम हैज बीन लाइक वेरी शॉर्ट ऑलवेज. क्योंकि बीइंग इन मुंबई मेरे को इतना ज्यादा कुछ दिखा नहीं था या फिर मैंने ज्यादा नोटिस नहीं किया था. बट यहाँ पे इट्स जस्ट डिफरेंट. ओके एंड पामी में देयर इज अ स्ट्रीट.
9: कहाँ पे?
8: पामी में स्ट्रीट. एलमीरा स्ट्रीट.
9: ओके
8: वो मेरा फेवरेट स्ट्रीट है.
9: अच्छा
8: किसी ने मेरे को दिखाया था कि ये एक स्ट्रीट है. मतलब मैं पैकेज से जा रहा था फ्लैटमेट के साथ जा रहा था तो उसने मेरे को बोला था मैंने तेरे को एक जगह दिखाता हूँ. ठीक है दिखा मेरे को. तो ऑन द वे टू पैकेज से उसने वो एलमीरा स्ट्रीट से लिया.
9: अच्छा
8: तो उसने मेरे को बोला कि ये वाला स्ट्रीट ना मेरा एकदम फेवरेट स्ट्रीट है.
9: अच्छा
8: मैं उसको पूछा कि क्यों तो उसने बोला कि तू अब देखेगा तब तेरे को खुद पता चलेगा. सो दैट्स वन स्ट्रीट जहाँ पे दोनों साइड पे सेम पौधे सेम पेड़ है. बड़े बड़े पेड़ है और वो दोनों साइड से ऐसे एक टनल बनाते हैं.
9: अच्छा
8: ओके ना द थिंग इज ऐसा तो बहुत सारी जगह
9: बहुत सारे जगह ऐसा तो इंडिया में भी काफी जगह पे हमने देखा
8: है. हाँ लेकिन ये वाले स्ट्रीट पे ना पता नहीं क्यों इट फील्स सो सिमेट्रिक.
9: ओह वाओ
8: दोनों

0: साइड पे पौधे ऐसा लगता है कि इट इज सिमेट्रिक एंड नॉट जस्ट दैट इट कुड बी द ट्रीज इट कुड बी समथिंग एल्स और वॉट एवर. हमेशा ऐसा लगता है कि जो पत्तियां है ना दे आर ग्लोइंग
1: ग्लोइंग.
0: हाँ ऐसा नहीं लगता है कि सनलाइट इज पासिंग थ्रू द लीव्स ऐसा नहीं लगता.
1: वाओ
0: ऐसा लगता है
1: कि वो इट बिकम्स अ कैनोपी काइंड ऑफ थिंग.
0: इट बिकम्स अ कैनोपी. और मेरे को नहीं पता कि वो स्ट्रीट में क्या स्पेशल है या फिर वो पेड़ों में क्या स्पेशल है पर इट लुक्स वेरी नाइस.
1: जब मैं पहली बार न्यूजीलैंड आई थी ना तो मैंने क्राइस्टचर्च में लैंड किया था एंड देन आई फ्लू टू वेलिंगटन एंड देन आई केम टू पामी ऑफ कोर्स. तो मैं जब पामी आई और बाकी जगह पर नहीं सोच रही थी यार ये मतलब कोई जगह कोई पेड़ के पत्ते इतने साफ कैसे हो सकते हैं. तो मुझे ऐसा लगता होता कि ये लोग रोज सुबह पानी डालते होंगे मतलब ऐसा ना पानी छिड़कते होंगे करते होंगे. But I saw there is nothing like that. It is the environment because it is so clear. It is so clean. It is so beautiful. So वो जो green and clean का जो है ना New Zealand का, so it's quite apt.
0: जब मैं आया था, so that was the 17th of February.
1: वाह, date भी याद है सर को.
0: हाँ, date भी याद है. नहीं, actually, sorry, 15th of February.
1: अच्छा.
0: Sorry. 15th of February was the day and 17th of February was the first day jab main university mein entry kiya tha main ye main main road se entry kiya tha jidhar wo left side pe stone
1: aise stone pe likha hua
0: hai
1: MS university
0: wo wala rasta ye ag research ke opposite wala wahan se main enter kiya tha. So that was the 17th. But 15th को जब भी मैं पहुंचा था तब just like you मैं पहले क्राइस्टचर्च आया. ठीक है क्राइस्टचर्च से कलेक्टिंग फ्लाइट था मेरा पामी का.
1: अच्छा तेरा सीधा पामी.
0: हाँ. तो मैं क्राइस्टचर्च पे उतरा और जैसा कस्टम्स क्लियर हुआ तो ग्राउंड फ्लोर पे आया मैं. ठीक है फिर मैंने बोला कि कनेक्टिंग फ्लाइट किधर है तो आई हैड टू गो अपस्टेयर्स. मैं ऊपर गया और मैंने बोला कि मैं अभी कहीं नहीं जाना चाहता मेरे को बहुत भूख लगी थी और मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं नहाऊं. मेरे को लग रहा था कि मैं अभी अभी मैं फ्रेश होना चाहता हूं अभी मेरे को कुछ खाना है और मेरे को सोना भी है बट मैंने बोला कि नहीं मैं कुछ नहीं कर रहा हूं मैं ना वॉशरूम देख रहा हूं ना कुछ भी देख रहा हूं ना मैं कुछ खाना देख रहा हूं मैं पहले जाके अपने गेट पे जाके बैठता हूं. सो इट वाज अपस्टेयर्स एक लेवल पे और वो जहाँ पे मेरा गेट था वो है मतलब टर्मिनल में एक एक गेट है जहाँ पर एक ऐसी फ्लोर टू सीलिंग ऐसा ग्लास है और वहां से आपको एयरप्लेन दिखता
1: है.
0: ठीक है रनवे दिखता
1: है. यू कैन सी दैट.
0: हाँ बट मतलब ऐसे ना वाइड नहीं था इतना एक्सपांस नहीं था वो पतला सा ही था और तब हो रही थी बारिश ओवरकास्ट था बारिश थी और तभी मेरे को पहली बार लगा कि मैं ऐसे जगह में आया हूँ जहाँ पे वेदर हमेशा ऐसा ही रहता है हमेशा ओवरकास्ट रहता है हमेशा बारिश होती रहती है हमेशा ग्लूमी उमी सा रहता है.
1: ओह माय गॉड दैट इज डिप्रेसिंग.
0: हाँ मैंने बोला कि यार मैं अभी मतलब 8 घंटे पहले 8-10 घंटे पहले मैं चंगी भी था. ठीक है जो मजे किए मैंने एयरपोर्ट बटरफ्लाई देखे पॉड्स देखे टर्मिनल देखे जूल देखा खाना खाया घूमा मस्त और सनी एवरीथिंग वाज सनी. फिर मैंने एयरपोर्ट पे ये नज़ारा देखा वेदर पे. मैंने बोला कि ओके अभी मेरे को ऐसा लग रहा है कि वो जो सनलाइट ग्रीन और वो सब कुछ है ना वो इधर कुछ दिखने वाला ही नहीं इधर मेरे को सब कुछ ग्रे दिख रहा है यहाँ पे मेरे को सब कुछ वाइट ग्रे ब्लैक यही दिख रहा है. कोई अगर मेरे को तभी कहता कि तेरे को ये जो सीन दिख रहा है ना दिस इज जस्ट वन पैलेट दिस इज वन जस्ट वन
1: पैलेट वन पैलेट करेक्ट
0: और तेरे को इतने पैलेट मिलेंगे कि तू खुद डिस्क्राइब नहीं कर पाएगा मैं शायद नहीं मानता उसको बट आई एम रियली हैप्पी

0: कि
1: you were wrong.
0: हाँ कि मेरे को ऐसा देखने को मिलता है जब भी रेंगेडी की स्ट्रीट से अपन फील्डिंग की तरफ जाते ना तो जब भी शाम के टाइम में सनसेट दिखता
1: है
0: तभी वो रास्ता देखने का
1: बहुत अच्छा है वहाँ पे कभी कभी ड्राइव करने में इशू होता है क्योंकि सन एकदम सामने आ जाता है
0: बट देन यू हैव टू ऑब्जर्व द कलर्स
1: आई नो ब्यूटीफुल और एक और बात बतानी मुझे तुझे बहुत इंटरेस्टिंग है बट एक गाना चलाते पहले
0: अच्छा आज ओके ठीक है मैं शुभ का गाना बजाता हूँ
1: किसका
0: शुभ
1: शुभ
0: शुभ
1: हाँ
0: आर्टिस्ट है
1: आर्टिस्ट है
0: पंजाबी गाने गाता
1: ओके बजाइए
0: ठीक है उसका गाना बजा रहा हूँ आई थिंक फेल फॉर यू ठीक है चलो सुनते
1: फेल फॉर यू
0: फेल फॉर यू
1: ये तो इंग्लिश के आर्टिस्ट लग रहे
0: हैं नहीं नहीं नहीं नहीं ये कुछ पंजाबी गानों का ये इट्स अ थिंग कि
1: एक लाइन इंग्लिश की गुस्सा दो
0: वो नहीं वो तो होता ही है बट गाने का टाइटल इज इंग्लिश
1: अच्छा बट गाना पूरा पंजाबी
0: गाना पूरा पंजाबी है
1: ठीक
0: जैसे करण औजला का गाना गाने का नाम है गाने का टाइटल है बॉयफ्रेंड बट गाना शुरू होता है अबाउट अ गर्ल बीइंग सैट डाउन बाय हर पेरेंट्स और वो उसको लड़कों की फोटोज दिखा रहे हैं
1: अच्छा
0: कि ये पसंद आया क्या वो पसंद आया क्या वो पसंद आया क्या एंड द एंटायर सॉन्ग इज दैट गर्ल सिंगिंग टू हर मदर एंड फादर एंड एवरीबॉडी दैट आई हैव आई लाइक समवन इसीलिए गाने का नाम है बॉयफ्रेंड
1: बॉयफ्रेंड
0: ठीक है इंग्लिश एंड देन शुभ का देयर इज वन सॉन्ग मुझे पसंद है मुझे काफी पसंद है गाने का नाम है वन लव लेकिन उसमें गाने का इंग्लिश का एक वर्ड नहीं है उसमें
1: अच्छा एक प्यार है ना उसका
0: हाँ मतलब
1: पर कुछ तो होगा ना एक प्यार से रिलेटेड
0: गाना है हाँ, मुझे पता नहीं मीनिंग पता नहीं मैंने पढ़ा नहीं अभी तक
1: अच्छा
0: बट इट सो दैट्स द ट्रेंड सो ये गाने का नाम है फेल फॉर यू
1: फेल फॉर यू ठीक है

0: ठीक है, मेरे को अब तक गाने का मीनिंग नहीं मालूम, बट मतलब बट आई अंडरस्टैंड,
1: वो बोलता है ना कि मैं मतलब आई एम काइंड ऑफ द लिरिक्स काइंड ऑफ हिट द सेम सेंटेंस
0: राइट. अभी जैसा वो एबी डिलोन का गाना ठीक है, एक्सक्यूजेस
1: एक्सक्यूजेस
0: ठीक है, इंग्लिश गाना नहीं है वो ऑलराइट, बट गाने का टाइटल एक्सक्यूजेस है. सो है ट्रेंड है ये.
1: ओके कूल, अब मैं तेरे को जो बात बताने वाली थी. हाँ, तो जब मैं पामी आई थी तो उससे पहले मतलब सबसे पहले व्हेन आई केम टू न्यूजीलैंड इन 2020 आई लैंडेड इन क्राइस्टचर्च. सो व्हेन आई वाज लैंडिंग इन क्राइस्टचर्च लिटरली तो मैंने प्लेन से, आप देखते हो ना कि कैसा लग रहा है भाई अब नई कंट्री में आए हो.
0: मेरे को विंडो सीट मिला नहीं था, आई हैव नो आईडिया.
1: अच्छा, मेरे पास विंडो सीट था तो मैं देख रही हूँ कि कैसे है नीचे यू नो सब कुछ. मुझे लिटरली आई कुड सी अ रिवर एंड द रिवर वॉज लिटरली ब्लूइश और लिटिल बिट ब्लूइश और ग्रेइश एंड वाज सो क्लीन, इट वाज सो क्लीन, आई कुड सी फ्रॉम द टॉप, इट वाज सो क्लीन.
0: वो
1: वाइका मारीरी
0: वीव पैटर्न रिवर,
1: यस वीव पैटर्न रिवर,
0: उसके ऊपर है ना रिसर्च हो रहा
1: है. अच्छा
0: हां
1: ओके,
0: यू गो ऑन, फिर मैं बताता हूं.
1: ओके, तो रिवर फ्लो कर रहा है ऐसे करके और आसपास बहुत ब्यूटीफुल पेड़ है, फेब्रवरी का टाइम है और हम ऐसे लैंड करें तो मुझे ऐसा लग रहा है यार ये तो पेंटिंग है, हम पेंटिंग के अंदर लैंड कर रहे हैं, मतलब इट वाज सो ब्यूटीफुल.
0: मेरे को इसीलिए पता नहीं है, एज इन उस टाइम पे मेरे को इसलिए पता नहीं चला था बिकॉज मुझे सीट मिली थी एकदम लास्ट कोपचे की जिसमें विंडो नहीं था. तो मैं एकदम ऐसा घुट के बैठा था. मैंने बोला था मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे को नींद आ रही है. जब मैं प्लेन में घुसा था तो मेरे को सीट पता चली. मेरे को तो लगा था कि हाँ ये सीट कुछ ज्यादा ही क्लॉस्ट्रोफोबिक लग रही है. बट मैंने बोला मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता. मैंने वो एसी का वेंट अपनी तरफ किया, जैकेट लिया और सो गया. मैं फिर बाद में कब उठा, जब ही अनाउंसमेंट हुआ कि अभी लैंडिंग की तैयारी हो रही है, क्योंकि बगल में जो बंदा बैठा था वो भी मोस्ट लाइकली वो भी हिंदी नहीं था.
1: अच्छा.
0: लग रहा था मेरे को तो वो पता नहीं कुछ तो घिचमिड़ घिचमिड़ कर रहा था. तो उसके हिलने डुलने से मैं उठ गया था.
1: अच्छा.
0: एंड मेरे को पता था कि हाँ अभी उतरने का टाइम आ गया अपना, अभी अपन उठते हैं बस. सो आई डिड नॉट सी द लैंड वाइल लैंडिंग.
1: ओके, कभी तेरे साथ ऐसा हुआ, ऑफ टॉपिक बट कभी तेरे साथ ऐसा हुआ है कि तेरे को एयर होस्टेस उठाने आई है कि बस अब खत्म हो गई है? ओके,
0: उतना कभी ऐसा हुआ ही नहीं.
1: मेरे साथ दो बार हुआ ऐसा. एक बार इंटरनेशनल फ्लाइट में, एक नॉन डोमेस्टिक फ्लाइट में. तो आई वेंट टू अ कंट्री इन अफ्रीका, आई वेंट टू केनिया. या आई वाज कमिंग बैक एंड आई वाज सो टायर्ड बिकॉज आई वाज सो बिजी एंड मूविंग अराउंड. मैं काम से गई थी, फिर उसके बाद थोड़ा सा घूमना फिरना भी हो गया तो उसकी वजह से थोड़ा ज़्यादा टायर्ड हो गई. तो जब मैं आई तो मतलब आई वॉज स्लीपिंग कि फ़ोन बंद है, सब बंद है, सो जाओ. और आई थिंक मेरे को ये भी नहीं पता वो खाना कब लेकर आई और कब लेकर चली गई. लाइक आई डिड नॉट इवन टेक द फूड बिकॉज आई वॉज स्लीपिंग, लाइक मतलब प्रोबेबली आई वॉज स्नोरिंग एंड स्लीपिंग मस्त एकदम. विंडो सीट मिला था, मैं सो रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ और दिल्ली में लैंड हो गया प्लेन.
0: अच्छा.
1: मतलब मैं वापस आ रही थी, वो लैंड हो गया एंड आई डिडंट रियलाइज कि वो लैंड हो गया. फाइनली एयर होस्टेस हैड टू कम एंड टेल मी
0: मैडम उठ जाओ.
1: हाँ मतलब मैंने देखा मेरे आसपास की सीट खाली हो रही है, मतलब दो चार लोग थे प्लेन में वो भी जा रहे थे. ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया.
0: नहीं मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, प्लेन में तो ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ मेरे साथ.
1: क्योंकि आई ऑलवेज पुट माय सीट बेल्ट्स ऑन, आई कीप पुटिंग माय लाइक कीप माय सीट बेल्ट्स ऑन ऑलवेज. तो ऐसा है नहीं कि मुझे दोबारा से लगाने की जरूरत पड़ेगी बट टेक ऑफ हो रहा है या फिर लैंडिंग हो रही है तो लगा हुआ है. मैं सोई हुई आराम से मस्त एकदम.
0: गोइंग ऑफ टॉपिक, मेरे को

0: भलता सपना है, पता
1: है? भलता, व्हाट इज भलता?
0: भलता मतलब अजीब,
1: अजीब क्या सपना है?
0: ओके, सो जब भी वो मार्वल यूनिवर्स का जो ट्रेंड था ना, वो जो फेज था ना मार्वल यूनिवर्स का, आयरन मैन एंड दिस एंड दैट, वो सब हल्क वल्क सब कुछ, तो हम लोग मार्वल मूवीज रेगुलरली देखते थे। मतलब मार्वल मूवी है देखने का ही देखने का, ऐसा नहीं है कि हम लोग दूसरी मूवी नहीं देखते थे। हम दूसरी मूवीज भी देखते थे, हम अच्छी मूवीज देख,
1: भाई की मूवी को छोड़ के तुम सब देख
0: रहे। अरे भाई की मूवी भी देखी हम लोग ने। हाँ, क्योंकि तभी, हाँ क्योंकि तभी कुछ और था नहीं।
1: अच्छा।
0: और हम लोग शिफ्ट हो गए थे, मैं चला गया था बदलापुर, वो आ गया था अंबरनाथ, एंड वी वर लाइक यार इधर कुछ है भी कि नहीं है कि हम लोग खाली मतलब जाके नदी में बैठने गए। तो तभी टाइगर जिंदा लॉन्च हो गई थी।
1: टाइगर जिंदा ये कौन सी मूवी है?
0: भाई की मूवी है। नहीं हाँ, टाइगर जिंदा लॉन्च हो गई।
1: एक तो टाइगर तो आई नो,
0: हाँ तो टाइगर जिंदा है, उसका सीक्वल है।
1: अच्छा।
0: क्योंकि टाइगर में दिस वाज अ क्लिफहैंगर कि टाइगर टपक गया,
1: टाइगर मर जाता है।
0: हाँ, बट दैट वाज अ क्लिफहैंगर।
1: ओके,
0: तो उसका क्लिफहैंगर, तो उसका सीक्वल आया टाइगर जिंदा है।
1: जिंदा है, जिंदा है,
0: जिंदा। एनीहो, सो दैट वाज द टाइम व्हेन We would wait, और तभी ऐसा regular Marvel movies आती थी, so this was kind of a highlight for us.
1: अच्छा।
0: तो मेरे को सपना आया कि Marvel का कोई नया picture निकला है।
1: अरे वाह।
0: और मैं और मदन हम लोग जा रहे हैं अभी picture देखने को, और मैं खड़ा हूँ मेरे घर पे इधर न्यूजीलैंड में।
1: अच्छा।
0: और मैं मस्त में बाहर देख रहा हूँ, और मैं उसको बोल रहा हूँ कि अरे क्या मस्त कलर है आज। क्या मस्त कलर दिख रहा है आसमान में। और मैरी बोल रहा है तू टाइम पे निकलने वाला है कि तू खाली आसमान देखता रहेगा। बोला हाँ निकलता हूँ निकलता हूँ, एंड देन बस खत्म, वो सपना खत्म हो गया।
1: ओके, सो बेसिकली सपने में तो मूवी देखने जा रहा था, बट न्यूजीलैंड के स्काई के कलर्स ने तुझे इतना अट्रैक्ट कर लिया कि तू मूवी की लेट हो गया मूवी के लिए।
0: नहीं
1: मतलब होते होते रह गए।
0: मैं हूं, वो उधर है
1: और तुम दोनों मूवी देख रहे हो। हाँ, ऐसा होता है ना,
0: जाने वाले अभी,
1: ऐसा होता है ना। एनीवे, यू प्ले अ गेम, प्ले अ सॉन्ग, एंड देन आई विल टेल यू समथिंग इंटरेस्टिंग।
0: अच्छा,
1: ऑन दिस।
0: अच्छा, कौन सा गाना बजाओ?
1: कोई गजल बजा दीजिए।
0: जाएगा नहीं ये,
1: what?
0: किसके साथ जाएगा? नहीं,
1: किसके साथ नहीं जाएगा, तेरी पर्सनालिटी के साथ।
0: एक मिनट, क्या
1: किसके साथ नहीं जाएगा गजल?
0: अभी जो गाने बज रहे हैं ना, उसके साथ गजल बैठेगा नहीं बीच में।
1: अरे तो कोई थीम थोड़ी ना है।
0: ओके, सो अनदर पंजाबी सॉन्ग। ये गाना मेरे को एक्चुअली पसंद है।
1: अच्छा,
0: अगेन गाने का टाइटल है हे लव।
1: अब देखते हैं उसमें क्या है।
0: ठीक है, सूखे का गाना।
1: ओके,
0: हे लव।
1: चलो ठीक है, सूखा सूखा ही लव।

0: सो इस गाने में मुझे हे लव समझ नहीं आया.
1: ओके,
0: मतलब कि जो भी गाने के लिरिक्स थे उसमें ऐसा हे लव जैसा कुछ समझ नहीं आया मुझे.
1: हे लव मतलब
0: हे लव. हाँ मुझे समझ में आया, मतलब इंग्लिश
1: बुला रहा
0: हूँ. हाँ लेकिन उस गाने में नहीं बुला रहा. एग्जैक्टली, सो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से.
1: अच्छा,
0: सो प्रोबेबली नॉट ऑल सॉन्ग्स आर टाइटल्ड वेरी वेल.
1: वैसे आई हैव अ थ्योरी.
0: या
1: आई हैव अ थ्योरी बिहाइंड दिस कि द रीजन व्हाई इट ट्रेंड है कि गाना पंजाबी है लेकिन टाइटल इंग्लिश है. इसका रीजन ये है कि ये जितने भी गाने हैं इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम जो हीरोइन है वो भारतीय नारी तो नहीं लग रही. मतलब आई मीन दिस ना,
0: तो क्या हो गया?
1: तो मतलब ये हो गया कि उसको शायद से पंजाबी नहीं आती रहेगी ना.
0: अच्छा,
1: तो उसको समझाने के लिए कि गाना क्या है बस इंग्लिश टाइटल दे दिया कि गाने का द गाना है इज अबाउट लव या फिर गाना इज अबाउट आई फेल फॉर यू.
0: आई फेल फॉर यू फिर भी मतलब थोड़ा सा मीनिंग जा रहा था वहां. हाँ पर इसका नहीं जा रहा. बट एनीवे लेट्स नॉट यू नो डिस्करेज देम.
1: नहीं नहीं, आई एम
0: वो इंग्लिश में रखें हिब्रू में रखें हमें क्या जा रहा है,
1: कोई फर्क नहीं. मेरे को गाने पसंद है, मैं सुनता हूं
0: बस.
1: सो ये गाना मेरे को पसंद है. एंड देन देयर इज आल्सो अनदर सॉन्ग बाय द सेम गाय अट्रैक्शन, वो भी पसंद है मेरे को.
0: अरे वाह, अब वो नेक्स्ट सॉन्ग क्या
1: है? नहीं वो नहीं बजेगा, वो शायद अगली बार बजेगा. मैं
0: ओके ब्रेक लेने का टाइम हो गया. आई थिंक
1: हाउ इज दिस हैपनिंग, हाउ आर यू कीपिंग द टाइम?
0: सी सीख रहे हैं हम समय के साथ.
1: अच्छा, ऑलराइट, ठीक है. वन आवर टू ब्रेक.
0: ब्रेक.
2: कम्युनिटी नोटिसेस ऑन एमपीआर. The Amitabha Buddhist Center hosts a drop-in meditation class every Wednesday 7 till 8:30 p.m. Everyone is welcome. The class is hosted by Birgit Saunders and focuses on the Six Perfections, a peaceful path. The Six Perfections

0: is music that teases and invites. It says, would you like to take a step now?
1: The forum brings together leading experts to discuss art, culture and history from around the world. From ballet to Baldwin, rap to Rasputin, Picasso to perfume.
2: The word perfume is coming from the Latin perfumare, which means through the smoke.
1: The forum from the BBC.
3: The BBC World Service. Midnight till 8 a.m. every day on NPR.
4: All right.
5: You're back. तो और सुनाओ, ऑटम के अलावा क्या क्या हो रहा है?
4: ऑटम के अलावा, तो ज्यादा कुछ नहीं हो रहा
5: है. इंडिया में ना आम आ गए हैं, बहुत अच्छे.
4: लगा ही था मेरे को कोई ना कोई किधर ना किधर तो आम का टॉपिक अभी निकलेगा ही निकलेगा. एज एन आई एम नॉट सेइंग इट विद यू. मतलब जैसा इधर अपने इधर मे का टाइम आ जाता है ना तो सब लोग बोलते हैं यार आम आएंगे, अभी आम आएंगे.
5: लेकिन आते बहुत लेट है.
4: कभी भी आए मतलब लोगों का अभी से ही चालू रहता है.
5: Of course, क्यों नहीं रहेगा यार? This is one of the most sought after fruits in the world.
4: ऐसा नहीं है.
5: Sort मुझे mangoes, okay, Indian mangoes.
4: Not all over the world. ऐसा नहीं.
5: No, not all over the world, as in. Okay, Indian mangoes are sought after in the world.
4: Sure. Okay.
5: तो इंडिया में क्योंकि बहुत वैसे तो अभी हर सीजन में आपको आम मिलता है मतलब स्टोरेज का, पर जो वो टेस्ट है ना और खासकर वो कुछ वैरायटीज ऐसी होती है जो कुछ दिनों के लिए आती है, मतलब आपके पास मार्केट में वो 15 या 20 दिन के लिए होगी या एक महीने के लिए. छोटे छोटे आम आते हैं, इतने एक उंगली के साइज का आम आते हैं, वो छोटे उंगली से थोड़े से बड़े होंगे शायद, वो मोटे मोटे होते हैं और उसका टेस्ट इतना अच्छा होता है. वो बारिश में आते हैं जब सीजन खत्म हो रहा होता है. बट यू नो वी यूज टू वेट फॉर दैट. तो हम हर चीज पहले हम वेट करते थे, अभी ये आएगा. एक आम होता है उसका नाम होता है सफेदा, वो आएगा. वो थोड़ा सा हल्का हल्का वाइट होता है, बड़ा वाला होता है, बड़ा वाला मैंगो. वो ठीक लगता है, नॉर्मल खा लेते हैं. फिर उसके बाद आता है दशहरी, जो मेरा फेवरेट है, विच इज वेरी स्वीट और टेस्टी होता है, उसको चूस के खाते हैं. फिर आते हैं चौसा, ग्रीन कलर का आम होता है वो, और वो भी खाते हैं बहुत ऐसे काट के, या फिर
4: लंगड़ा होता है.
5: एक लंगड़ा होता है,
4: एक
5: तोता पाए होता है. और एक ये होता है छोटा वाला, क्या बोलते हैं उसको, जो इतना आम होता है
4: वो नहीं पता.
5: तोता पाए इज लाइक, उसका शेप बहुत अलग सा होता है ना,
4: उसका जो शेंडी होता
5: है, शेंडी
4: वो तोते की चोंच की तरह आता है.
5: हाँ हाँ,
4: इसके लिए उसको तोता
5: पाए. रत्नागिरी आता है, केसर आता है, कितने आम आते हैं. एक्चुअली इंडिया हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ मैंगोस, मैंगो वैरायटी इन द वर्ल्ड.
4: ओके,
5: आई एम नॉट सरप्राइज्ड.
4: सी, इवन आई लाइक मैंगोस, इट्स जस्ट दैट आई एम नॉट दैट, आई डोंट फॉन ओवर मैंगोस.
5: Okay.
4: कोई मेरे को खिलाएगा, I'll be very happy. मतलब हाँ, मस्त लगता है खाने को, बहुत अच्छा लगता है मेरे को. But ऐसा नहीं है, ऐसा I'm not crazy behind it. Fan following नहीं है मेरा ऐसा आम के लिए.
5: आम के लिए, okay.
4: हाँ.
5: तो मिला तो मिला, नहीं मिला तो नहीं मिला.
4: हाँ, नहीं मिला तो नहीं मिला. Because I don't even remember the last time I had हापू सांबा.
5: What is that?
4: Alfonso mangoes.
5: Alfonso
4: mangoes are called as hapus aam.
5: Oh my god, Alfonso is better.
4: अरे लेकिन मराठी में उसका हापुस बोलते हैं ना, तो मैं क्या करूँगा उसको?
5: हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ, मैंने कहीं देखा है किसी जगह पे
4: क्या
5: हापुस आम.
4: हाँ, दुकान पे हिंदी मराठी में ही लिखा रहता है हापुस आम, हापुस आम्बा.
5: ओके, फिर
4: वैसे ऐसा पंजाबी में कुछ और अदर, मतलब कुछ और वर्ड है क्या आम के लिए?
5: नहीं, आम ही बोलते
4: हैं. अच्छा, ओके.
5: और मराठी में?
4: मराठी में उसको आंबा बोलते हैं.
5: आंबा. तो हम कई बार उसे अम्मी ऐसे ना, छोटी होती है तो अम्मी बोलते हैं, बट ग्रीन वाले जो आम होते हैं ना, अचार वाले जिसकी चटनी भी बनती है,
4: उसको कैरी बोलते हैं.
5: हम अम्बी बोलते हैं.
4: उसको कैरी बोलते हैं.
5: अच्छा, हम अम्मी बोलते हैं
4: मराठी में उसको कैरी, सॉरी हिंदी में उसको कैरी कहते हैं, मराठी में उसको कैरी कहते हैं.
5: करी
4: कैरी
5: कैरी
4: कैरी या
5: ओके. नहीं, हम

0: उसको पंजाबी में ऐसे ही बोल देते हैं, अंबी अंबी।
1: ओके,
0: तो कहने का मतलब ये है कि आम जैसी चीज। अब जैसे मेनी पीपल दे गो टू वियतनाम एंड दे जस्ट लव द कोकोनट वाटर।
1: इधर मिलता है बॉटल में?
0: नहीं मिलता है, पर वो फ्रेश पीने का मजा ही अलग है ना। तो ऐसे आप जहाँ जाते हो वहाँ का फ्रूट खाओ। तेको पता है मेरे को लीची खाए हुए कितने साल हो गए।
1: हाँ, इधर आई थिंक मैंने एक ही बार खाई है।
0: अच्छा खाई है?
1: हाँ, वैसे ही इंडियन स्टोर में मिली थी। अभी तो मेरे को याद भी नहीं है कौन से स्टोर से, इंडियन स्टोर से मिली थी। ज्यादा नहीं ली थी मैंने, थोड़ी सी ली थी और बस खा लिया। और फिर
0: फ्रोजन मिली थी?
1: नहीं, फ्रेश।
0: अरे वाह।
1: हाँ, तभी इंपोर्ट की थी। एंड मैं जब इंडिया गया था तभी मैंने खाया रहेगा बस। लीची का आइसक्रीम मेरे को पसंद है। ओके,
0: लीची का आइसक्रीम।
1: ओके, अभी वही बोलने वाला था मैं। ऑकलैंड में ना एक जगह है, अभी मैं वो स्ट्रीट का नाम भी भूल गया। वो स्ट्रीट का नाम मैं एक दुकान से याद रखता हूँ।
0: अच्छा,
1: देयर इज दैट फ्रोजन आइसक्रीम प्लेस व्हाटएवर, वो रात तक खुली रहती है।
0: ओके,
1: इसीलिए मेरे को पता है वहां पे लीची आइसक्रीम मिलती है और वो बहुत अच्छी बनाते हैं।
0: मैंने मैंने ऐसे बहुत सारे फ्लेवर सुने हैं
1: वो मुझे... रोल आइसक्रीम।
0: अच्छा अच्छा, रोल, वो जो रोल करके
1: रोल करता
0: है। हाँ, अच्छा अच्छा, आई गेट इट, आई गेट इट। मैंने एक चीज देखी है कि आजकल बड़े अलग अलग फ्लेवर्स, डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स आ गए।
1: किस में?
0: आइसक्रीम्स में।
1: हाँ,
0: एक माचा, चलो माचा तो ठीक है, मतलब
1: हाँ, बिकॉज अ लॉट ऑफ द आइसक्रीम्स दीज डेज इज नॉट आइसक्रीम।
0: अच्छा, इट इज,
1: इट इज फ्रोजन प्रोडक्ट।
0: ओके,
1: जैसे येच, ये जो रोलिंग आइसक्रीम जो है ना, इट्स नॉट एन आइसक्रीम, आइसक्रीम नहीं है वो।
0: ठीक है,
1: इट इज फ्रूट पल्प, मे बी क्रीम या फिर दूध, एंड ऑल ऑफ दिस इज मैश्ड बट इट इज डन ऑन अ कोल्ड सरफेस।
0: ओके, हाँ, ताकि वो बार बार जम जाए।
1: हाँ, तो वो जो रादर देन दैट बिकमिंग अ स्मूदी, दैट बिकम्स फ्रोजन पार्ट दैट फील्स लाइक एन आइसक्रीम। होता वो स्मूदी है लेकिन आइसक्रीम नहीं होता वो, इसीलिए यू आर एबल टू गेट अ लॉट ऑफ फ्लेवर्स। For for anything to become an ice cream, you have to whip it so that उसके अंदर air ये हो जाए, amalgamate हो जाए।
0: Okay.
1: इसके लिए घुमाते हैं उसको, उसको time लगता है।
0: Time लगता है।
1: हाँ, लेकिन ये जो बाकी चीज़ होती है, it's not ice cream। जैसे gelato, gelato is not gelato। इसलिए gelato में आपको बहुत सारे flavors मिलते हैं।
0: मैं कभी गई नहीं जिलेटो।
1: अरे जगह नहीं है कोई,
0: मतलब मैंने कभी खाया नहीं जिलेटो।
1: हाँ, तो इसीलिए देयर आर अदर फ्लेवर्स।
0: ओके,
1: ऐसा नहीं है कि आइसक्रीम में फ्लेवर्स नहीं है।
0: एक मैंने एक बार बहुत अजीब सा फ्लेवर खाया था, गुआवा आइसक्रीम।
1: ओके,
0: मुझे लगा, मैंने मंगवा तो ली, लगा यार मैं खा पाऊंगी क्या, नहीं। एंड एक और चीज थी, गुआवा आइसक्रीम विद कोक सिरप। कोक होती ना हमारी,
1: साउंड्स हॉरिबल
0: बट हमने खाई एंड इट वाज सरप्राइजिंगली टेस्टी।
1: टेल मी, ये दिल्ली में मिला था?
0: हाँ, तो
1: ओके, नहीं ठीक है, अच्छी बात है।
0: अरे टेस्टी थी,
1: आई एम श्योर, जैसे दूध सोडा भी टेस्टी होता है।
0: दूध सोडा, हाँ लोग पीते, लोग वो कोक सोडा पीते।
1: Which?
0: Okay, ठीक है, अभी
1: दूध कोक,
0: दूध कोक, वो कहते शक्ति आ जाएगी और ठंडक भी आएगी।
1: हाँ, शक्ति आएगी और ठंडक भी आएगी।
0: हाँ, अब बताओ कौन सा गाना सुना रहे हो
1: अभी? भिक्की कौशल का एक गाना है।
0: ओके, वाओ।
1: बैड न्यूज करेगी

0: पिक्चर है,
1: बैड न्यूज, ओके,
0: उसका गाना है जानम
1: जानम जानम देख लो,
0: नहीं वो वीर जरा का गाना है, बहुत अच्छा गाना है।
1: नहीं वो उतना अच्छा नहीं लगा रहे हम
0: नया कुछ
1: सुनने की कोशिश कर रहे हैं। ओके
0: ऑलराइट।

0: तो ये गाना मतलब ठीक है, it was very slow.
1: I like the singer.
0: Who's the singer?
1: बहुत ट्रेंड में आजकल.
0: क्या नाम है?
1: विशाल मिश्रा.
0: Okay.
1: मुझे इसका आवाज अच्छा लग रहा है.
0: क्यों?
1: वो अपनी आवाज को बहुत अच्छे से मॉड्यूलेट कर पाता है.
0: ओके, मतलब डिपेंडिंग ऑन द सॉन्ग, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द सॉन्ग.
1: यप.
0: वाओ.
1: और मेरे को ऐसा लगता है.
0: तूने अभी तक कौन से उसके वो देखे हैं रिजल्ट, मतलब कौन से उसके ऐसे वो देखे हैं गाने?
1: देखे
0: मतलब सुने, सुने.
1: अच्छा, आवर बिलवेड रणवीर कपूर.
0: ओह माय गॉड.
1: उनकी एक पिक्चर आई थी, एकदम बलती पिक्चर आई थी.
0: बलती?
1: हाँ.
0: कौन सी?
1: एनिमल.
0: ओह या या, दैट वाज बलती. व्हाटएवर बलती इज.
1: So animal is balti.
0: So that's what I'm saying.
1: Yeah.
0: Ki whatever balti is, it actually sounds ki it is apt for that movie.
1: Yeah. उस पिक्चर में एक गाना.
0: ठीक
1: है. गाने का नाम है पहले भी मैं. रोमांटिक गाना.
0: हाँ, पहले भी मैं. हाँ हाँ, याद है मुझे.
1: Nice song.
0: अच्छा song है वो.
1: अच्छा

0: वो इन्होंने गाया?
1: या, वो इन्होंने गाया।
0: अच्छा, विशाल
1: मिश्रा।
0: मिश्रा,
1: ओके। एंड देर इज दिस वन सॉन्ग, मतलब नया गाना नहीं है, बहुत पुराना भी नहीं है, बट समझ ले 3 या 4 साल पुराना रहेगा। एंड आई केप्ट फीलिंग दैट ये गाना अर्जुन कनुंगो, देर इज दिस आर्टिस्ट सिंगर है, पॉप आर्टिस्ट है, उसने गाया।
0: अच्छा।
1: एंड आई केप्ट फीलिंग कि यार सही है, अगर अर्जुन ने गाना गाया तो अच्छी बात है, गुड। मतलब मेरे को पता नहीं था वो बॉलीवुड में भी गाना गाता है। ही एक्चुअली वो अंग्रेजी गाने बनाता है, हिंदी भी गाता है, बट वेस्टर्न
0: गाने ज्यादा है।
1: तो मेरे को लगा था सही है, ठीक है, बट नहीं, दैट सॉन्ग वॉज ऑल्सो और इज ऑल्सो सॉन्ग बाय विशाल मिश्रा। सो विशाल मिश्रा reminds me of Arjun, and Vishal Mishra also reminds me of Ash King. But jab hi I listen to Vishal Mishra, I like listening to Vishal Mishra.
0: Okay, matlab usi ke song sunne ka bar bar man karta hai?
1: Nahi, aisa nahi bolunga. It's just that like I said, wo modulate bahut acche se karta hai. Wo
0: वो एक एक वर्ड को समझता है,
1: ये बोलो क्या। हाँ,
0: और अब मतलब ऐसा होता है कि कुछ सिंगर्स जो होते हैं वो गाना गा रहे हैं, और कुछ सिंगर्स जो होते हैं वो गाने का जो मीनिंग है उसके इमोशंस के साथ, मतलब इमोशंस के साथ गा रहे हैं, तो द मीनिंग कम्स आउट वेरी वेल।
1: देयर इज दिस वन थिंग व्हिच आई डोंट रियली लाइक अबाउट मेनस्ट्रीम movies या movie के गाने।
0: अरे हाँ, आजकल तो
1: नहीं, there is this one particular thing, और ये ऐसा नहीं कि अभी से ही हो रहा है, ये बहुत पहले से हो रहा है। I don't know why that is, कि कोई एक अच्छा सिंगर है, उससे गाने गवाएंगे, फिर उसी के गाने चलते रहते हैं, ठीक है, वो गाने बहुत अलग अलग के गाएगा, अलग टाइप के गाएगा, but for a period of say 5, 7, 10, 12 years बस उसी के गाने चलते रहते हैं। गाने बहुत अच्छे होते हैं, इसीलिए तो वो ट्रेंड में रहता।
0: Exactly.
1: And then suddenly वो फिर बंद हो जाता। And then some singer. And then suddenly
0: he takes a break ना?
1: नहीं। And then suddenly a new singer is in trend now. जैसे
0: I don't know.
1: अब जैसे थोड़े टाइम पहले तक मोहित चौहान वाज एवरीवेयर, ठीक है, उसके बाद में अरिजीत सिंह वाज एवरीवेयर, ठीक है, अभी अरिजीत सिंह इज नॉट दैट मच, उतना ट्रेंड में नहीं है, ठीक है, जितना पहले था, ठीक है। अभी विशाल मिश्रा का ट्रेंड शुरू हो रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है, अभी तक आया नहीं है वहां पे,
0: पर जैसे तूने बताया ना कि वो जैसे गायब हो जाते हैं थोड़े टाइम बाद,
1: एंड इट्स इट हैज नथिंग टू डू विद द सिंगर्स,
0: इट हैज टू डू विद देयर
1: इंडस्ट्री, राइट। माय क्वॉम इज और ये मैं पहले बोल चुका हूँ, माय क्वॉम इज, मेरे को ऐसा लगता है कि अ गुड सिंगर डेवलप्स with his age, his singing matures with his age.
0: I would say the same for an actor.
1: क्योंकि
0: artist हो ना आप,
1: right?
0: तो आपको जैसे सीखना पड़ता है, आपको break लेना पड़ता है।
1: हाँ, अभी जैसे KK, ठीक है, वो जब भी आया था तभी वो जिस तरह से गाना गाता था, ठीक है, and then towards the peak, मतलब absolute peak, the इमरान हाशमी phase. उस तरह से वो वाले गाने उसने जिस तरह से गाए हैं, वेरी डिफरेंट, बट देन यू कैन सी कि हाउ ही हैज मैच्योर्ड। पहले भी बहुत अच्छे गाना गाता था, बट देन द सिंगर डेवलप्स अ फ्लेवर, राइट,
0: और एक यू नो जो उसके श्रोता होते हैं, तो उसको सुनने वाले होते हैं, वो पहचान जाते हैं,
1: राइट,
0: और उनको समझ में आता है कि अभी क्या इमोशंस है। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि एक सॉन्ग में ऑफ कोर्स सब

0: कुछ ज़रूरी है, म्यूज़िक भी बहुत अच्छा ज़रूरी है, लिरिक्स ज़रूरी है, बट जो मुझे ऐसा लगता है कि जो सिंगर होता है ना, जो भी चाहे वो कोई भी लैंग्वेज में गा रहा हो, बट यू कैन समहाउ अंडरस्टैंड द इमोशंस.
1: यस, इसीलिए काफी

0: सुनिए मुंबई के मल्हार
1: और दिल्ली के शिल्पी की
0: पामी की
1: पागलपंती
0: नॉट अ शो पर
1: हर सोमवार और शुक्रवार
0: शाम 5 बजे ऑन मानवाटो पीपल्स रेडियो
1: या सुनिए ऑनलाइन
0: npr.nz/show/indian पर
2: हेलो फ्रेंड्स आई एम टेसा बिटवीन टू वर्ल्ड्स आर कन्वर्सेशंस ऑफ फेथ ग्रीफ एंड होप एवरी मंडे एंड सैटरडे एट 4 पीएम ऑन npr One or two people's radio. Te reo e rangi o ngā tangata o Manawatū. Catch us on demand at npr.nz/show/Between Two Worlds or wherever you get your podcasts.
3: Business Daily from the BBC. It's about so much more than business, you know. We cast our nets wider. We talk about money, work, the economy, the office, big policy issues, things that matter to everyone, not just stockbrokers. Not that there's anything wrong with stockbrokers, obviously. For business talk and so much more, Business Daily from the BBC.
4: The BBC World Service. Midnight